0: देवरिया गोविंद मन की त्रिवरिया अवर काज करे कितने नकाम मिल साध संगत भज के बल नाम शरण राम लाभ भोजन करण के जन्म बिठा जात्र माया के खराब
1: जब तब

महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चिंत नहीं भयो। आप अपनी बुद्ध देते वर्ण पिन पिन तो देते तुम्हारा लखाना जाय पसारा कह भी सदा प्रथम संसारा एक रूप रूप स्वरूप राव के गोपा अंड जेर से तिस्किनी कुछ खान बो राय दिनी राजा हो बैठा कौ सिमट प्यो शंकर खेटा सगली शिष्ट काय चंबो आजुगा सरु संयंबो और अच्छा मेरी तुम करो सिख बार असिख संगरो दुश्चित देव थुत पाता सकल गुलेश करो नन खाता जे अस्तुता सरणी परे तिनके दुष्ट दुख थे मरे पुरख जम पग परे त्यारे तिनके तुम

0: बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहल तुरे।
1: थाल विच त्रिमस्तु पयो सासन तो विचारो अमृत नाम ठाकर का पान जिसका सब सरदार जिको खावे जिको पुंछे इसका होए कदार हो ये बस तजी ना जाए नित्र खोरदार हो।

बेटा तेरा ये नहीं, प्यारे गुरुदेव सतगुरु सच्चे पातशाह जी, साडे जीवन दे विच जो सोझी विचार और मत अज्ञानता के कारण दुनियावी मोह ममता के कारण अत्यंत तृष्णावां के कारण जो असल सोझी होनी चाहिए है इंसान में वो नहीं है। ते गुरु बाबा जी अपने शब्दों के राही अपने इन्हां पवित्र वचना के राही सानू ओ मत बख्शते हैं जिस मत नूं गुरु मत आख्या जाता है, गुरु की मत जो कि जीव के जीवन च आए तो बिना इतनी देर तक जीव के जीवन के जिंदगी दे विच गुरु की मत ना आ जाए उतनी देर तक वह अंधेरे दे विच ही रहिंदा है, अंधकार दे विच ही रहिंदा है। कल दे कीर्तन दे विच असीं यही विचारिया सी, मत जो साधारण तौर पर सानू मिली है उस मत दे विच अजिही शिक्षा शामिल नहीं जो कि साडे जीवन नू सफल कर सके, साडे जीवन नू इसकी मंजिल तक पहुंचा सके अते मनुखा जन्म असी सफला कर सके। गुरु बाबा जी की बाणी असी सारे पढ़ते हैं अते गुरु बाबा जी की बाणी दे विच एक गल बिल्कुल स्पष्ट है कि साडे इस ह्यूमन फॉर्म दे विच आण दा कोई बहुत ही खास पर्पस है, एवें नहीं असी आए। ह्यूमन फॉर्म दे विच आण दा बहुत वड्डा रीजन है, एक खास मकसद है जिसनों असी पूरा करना है। ये शिक्षा ये तालीम असी बड़े कैजुअल माइंड के नाल सुनते हाँ पर इसनों असी बहुता ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे। पर महाराज जी की बाणी इसनों बहुत सीरियसली लेंगे। महाराज जी की बाणी आखदी है तुसी सिर्फ एक ही काम करन दे वास्ते आए हो, तुहाडा इस ह्यूमन फॉर्म दे विच आण दा बहुत एक भारी मकसद है। वो की है? गुरु बाबा जी आखदे हन अपनी पवित्र बाणी दे विच

आप जी ने बाणी नू पढ़दिया जां सुणदिया एक लफज बहुत दफा सुनिया होएगा, निज घर। निज घर बाणी च आंदा है ना। गुरु महाराज कहते हैं जितनी देर तक तू अपने निज घर के विच नहीं चल जाता, जिहड़ा तेरा अपना घर असल घर, उतनी देर तक तू बेघरा है। बेशक तेरे पास घर है भी, तां भी एक घर तेरा नहीं, एक घर नहीं। तो गुरु महाराज जी की बाणी का यह जिहड़ा सुनेहा है, यह जिहड़ा मैसेज है, यह जिहड़ी मत है कि इंसान तेरी जिंदगी ने उस दिन पूर्ण तौर पर सुकून और सुख दे विच पहुंचना है जिस दिन तू अपने निज घर दे विच पहुंच गया। कीर्तन सोहले का पाठ असी रोज करते हैं। सोहले की बाणी दे विच असी ये पंक्ति भी रोज पढ़ते हैं। पंक्ति असी रोज पढ़ते हैं, पर असी पंक्ति पढ़ जाने हैं निज घर नूं प्राप्त करन दी ना ते अंदर कोई ख्वाहिश पैदा होंदी है ते ना ही वो चीज साडे वास्ते कोई खास इशू बनती है कि मैं अपने इस गुरु बाबा जी दे वचन च जो अपने निज घर नूं लभण नूं आख्या जा रहा है उस निज घर नूं भी लभना है। पर असीं पढ़ रोज जाने हैं, यही कारण है कि गुरबाणी सिर्फ एक पढ़न तक रह गई है, जो इसकी असल साइंस है उस वल असी कदम नहीं उठाए, अपनी जिंदगी उधर तोरिया नहीं। हुण पंक्ति रोजाना जिहड़ी फेमिलियर है, असी पढ़ते हैं। महाराज जी कहते हैं

गुफा पुराने लोग ऋषि मुनि गुफामा बना के रिहा करते सन। गुरु महाराज जी आखद साड़ी भी एक गुफा है, असी एक गुफा दे विच रहने हैं, पर वो केड़ी गुफा है? कहिंदे सहज अवस्था। हुण सहज की चीज है? आत्मा ही सहज है। अकाल पुरख वाहिगुरु सहज है। सहज का मतलब जो कदे भी ना बदलता होवे उसनू सहज आखते हैं। शरीर सहज दे विच कमजोर हुंदा है, कदे ताकतवर हुंदा है। शरीर दे विच अनेकां चेंजेस आंदियां हन, कदे बचपन है, कदे जवानी है, कदे बुढ़ेपा है। शरीर दे विच हर वक्त चेंज आंदी है। शरीर दे अंदर एक होर वस्तु है, वह है मन। वो भी सहज दे विच नहीं है। ना शरीर सहज है, ना मन सहज दे विच है। ते सहज दे विच केड़ी वस्तु है? केड़ी वस्तु है? आत्मा। आत्मा जो वस्तु है वह सहज दे विच है। गुरु महाराज जी कहंदे वह सहज जो है, आत्मा जो है, उस दे विच असीं अपनी गुफा बना के उत्थे रहने हां, वह साडा घर है।

अर्थ अनंत, अनंत का मतलब लिमिटलेस, कहते बेअंत इसका कोई हिसाब ही नहीं है, इतनी खुशी है। उत्ते अर्थ अनंत सोग नहीं बिया, सोग का नामो निशान नहीं है, कहते हन सोग घर गुरु नानक को दिया। परमेश्वर ने अकाल पुरख ने गुरु नानक नो कर दिता है, वह है निज घर। किते महाराज उसनु सहज गुफा आखदे हन, सहज गुफा घर आसन बांधिया। किते आखदे हन हरख अनंत सोग नहीं बीया, सो घर गुरु नानक को दिया। तो एक पंक्ति होर सुनाना, कहते हैं नानक बद्दा करता हां। असी भी जदों एक ते हुंदा ना भी बनया बनाया कर ले लेना, एक हुंदा है कस्टम मेड हाउस बनवाना, के प्रॉपर कोई आप सिलेक्ट करके लॉट लैके कोई लोकेशन देख के कोई जगह लैके फिर आप उत्ते अपनी डिजाइन दा अपने मतलब दा घर बनवाना, घर बनना। गुरु महाराज जी आखदे हन के मैं अपना घर उत्थे बनाया है, नानक बद्दा करता हां, कि मैं अपना घर तहां यानी उत्थे बनाया है। किथे? जिथे मृत ना जन्म जरा, ना उथे मृत्यु आंदी है, ना उथे जन्म है, ना मरण है, ना बुढ़ेपा है। भाव उथे निज घर महल पावो सुख सहजे बहोर ना होए गो फेरा, उथो फिर वापस फेरा नहीं होएगा। उस घर च पहुंच के ही तुसी अपनी मंजिल च पहुंचते हो। उस तो उरे उरे जितने भी घर हन गुरु बाबा जी आखते हैं ये तुहाडा डेरा नहीं है, ये रस्ता ही है। मनुखा जन्म जो है ओ राह दे विच ही तुसी हो, ये पेंडा ही है, इसनु मंजिल ना समझ लो। ते इथे घर बना के बैठ गए ते उथे रुक गए ते फिर तुसी मंजिल ते ना पहुंचे, रस्ते दे विच ही रुक गए। ये है गुरमत की तालीम। प्यार नाल इस पंक्ति नु गाओ।

अवेकनिंग दे रही है, ये जाग लिया रही है साडे अंदर, सानू जगा रही है कि अगर एना ही घर अपना घर बना के बैठे हो ते राह दे विच ही जिस तरह कोई रुक गया होवे ओ हाल है, ये मंजिल नहीं है, ये रस्ते दे विच ही एक छोटा जा पड़ा है। चंद एक दिना दा, नानक दुनिया चार दिहाड़े, बस इतना की है इसका स्थान। नानक दुनिया चार दिहाड़े, सुख कीते दुख होई, एना चार दिना दे वास्ते जितने ज्यादा सुख ढूंढोगे उतने ज्यादा दुखी होवोगे, उतने ज्यादा परेशान होवोगे। तो एक दफा आओ इस विचार नू अपने अंदर लेके जाना है नाल, कि असा कोई अपना निज घर हाले होर है जो लभना है, जिथे जाके ए साडी रूह ने निवास करना है, इस विचार नू नाल लेके जाना। प्रेम नाल एक दफा इस पंक्ति नू रोज रख के चल रहे।

इंसान इथे नालों ज्यादा फिक्रमंद तेन अगां लई होना चाहिए। उथे की करेगा, उथे फिर तू की कर सकेगा। ए दो रीजन हैं जिन्हां दे करके जो साड़ी अवेयरनेस दे विच ना होण करके, साडे ध्यान दे विच ना होण करके असीं इत्थे दे डेरे दे विच ही मस्त होके आराम नाल बैठ जाने हां अते अपना निज घर प्राप्त करन तों असीं महरूम रह जाने। आओ हुण महाराज जी दे विचों महाराज दी बाणी दी पंक्तियां सुनो, क्योंकि मैं अर्ज कीती सी कि हर गल जो है वह गुरु बाबा जी का स्नेहा ही आप जी नूं पहुंचाणा है। तो गुरु महाराज साडे जीवन नूं देख के साडे जीवन की जो कमी है उस नूं देखदे हन कि सानू अपनी डे टू डे लाइफ दे विच इह अवेयरनेस नहीं कि असां मरना भी है। तो जिन्हां नूं ओह याद है ओह बाणी च आखदे हन भै मरबे को विसरत नाहन ते चिंता तन जारा। कहिंदे मरण दा जिहड़ा भै है ये जिहड़े जागरूक हन अवेकंड हन उन्हां नूं है। ओह कहिंदे इस चिंता ने ते तन जाल के रख दिता है, साड़ के रख दिता है, कमजोर करके रख दिता है कि अगां की बनेगा मेरा जाके, क्या जाना क्या होएगा रिमाई। गुरु महाराज जी अनेक वचन कहते हैं। तो गुरु महाराज ये आखते हैं साडे जीवन नूं देख के साडे जीवन दे विच जो करेक्शन लियाण वालियां हन उन्हां नूं जदों देखते हैं तो कहते हैं

वो बिल्कुल भुल गया है, वो बिल्कुल मरना भुल गया है, इस करके असि इत्थे अपना डेरा बना रहे। कहते हैं ये डेरा नहीं है, इथों अगा ट्राई टू मूव फर्दर। गुरबाणी दे विचों अपनी मंजिल समझो, निज घर नूं प्राप्त करना है जो कि तुहाडा असल डेरा है। कहते हैं मत्ती मरण विसारिया, इस मत्ती हुई मस्त मत ने जो कि दुनियावी रंग च मस्त है मरना विसार दिता है,

सबना होए दारू सबना होए दारू पाप कटे धोए नानको खाने बेनती खिन सच पर।

तिन्नी खसम त्याया इना जनता कह वस किश नाही तुवे की जग तो पाया एक नानू तू मिल कापो तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदा बुझाया सहजे ही सच समाया।

गुरसिख माई भाई साहब जी जिन्होंने आप जी ने बख्शिश करके ए दात बख्शी और आप जी दे दरबार ही जुड़ के आप जी दे बख्शे खजाने सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द का आदर करते हैं कीर्तन भेट गाउन अरदास कराते हैं अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखा बच्चे बच्चिया नामदान बख्शो कारोबार च वादे बख्शो सिखी जीवन सत्संग दी दात बख्शो।

राग सारंग सदियों तो प्रचलित एक सरल मधुर अते लोकप्रिय राग है। अनेक लोक गीतां दियां धुनां इसे राग ते आधारित हैं। चरवाहियां दी वंजली अते सुपेरे दी बीन उते इस राग दियां मधुर सुरावलियां आम सुनाई दिंदियां हैं। सुपेरे दी बीन चों जदों सारंग दी धुन निकलदी है तां सप मस्त होके नच उठदा है। सारंग दा प्रभाव अति ठंडा है, इसलिए सिखर दुपहरे गाया जांदा है। गुरु महाराज ने सारंग राग विच मन दी तपश मिटा के ठंड वरताउण लई सारा मजमून ही गुरु शब्द दी महानता दा रख्या है। ए पता भी दिता है कि नाम दी कमाई सतसंगत विच ही हुंदी है। काल खाए किछ हथों दे नानक राहो पछाणे से, इसका उपदेश इस राग विच है। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दोनों निषाद लगदे हन, गंधार अते धैवत वर्जित हन। वादी ऋषव अते संवादी पंचम है, गायन समा है दिन दा तीजा पहर। सारंग राग विच पहले शब्द दा गायन कर रहे हन प्रोफेसर परमजीत सिंह जी। शब्द दी आरंभिक तुक जप मन जगन्नाथ जगदीशरो, अते दूसरे शब्द नूं गायन कर रहे हन भाई दिलबाग सिंह भाई गुलबाग सिंह जी। शब्द दी पहली तुक है हर हर संत जना की जीवन। सरवण करो पहला शब्द जप मन जगन्नाथ जगदीशरो।

सारी उम्र छोटे छोटे लाभां नूं वेखदे रहने। भाई बड़ा कुछ कमा के बड़ा कुछ पा के चीज की समझ आंदी है कि रब दे नाम तुल कुछ नहीं। जेड़े मेरे वर्गा कोई गरीब फकीर होवे ओ सारी उम्र नस्सा फिरदा दौलत दे मगर, पर जेड़ा बहुत कमाई कर लवे ओनू फिर पता लगदा है कि सब तो वड्डा जो है रब दा नाम है। कबीर साहब कहंदे हन, होछी मत मेरी जात जुलाहा, हर का नाम लियो मैं लाहा।

हे परमात्मा मैं तेरे दर दा भिखारी हां, मंगता हां, आरता मैंने मंगता। जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोमन पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।

राज पूले कहूं पवर होए के भली पात पूले, कहूं फूल होए के भली राज पूले, कहूं भवर होए के भली बात, कहूं अश्व होए के बह बेग ऐसे, कथो मैं न आऊं कथो तो है कैसे, कहूं न आऊं कथो तो है कैसे, कथो

सेवक सिख पूजन सब आवै। सतगुरु गरीब नवाज साहब गुरु रामदास महाराज का पवित्र वाक है भाई, पूजन सब आवै, सेवक ते सिख गुरु के दरबार अंदर पूजन वास्ते आउंदे ने। किसनू पूजन? जो कोई हस्ती होएगी ना जिसनू पूजन वास्ते आउंदे ने, ते पूजन वास्ते आके उसनू पूज के अमृत रूप बाणी नू उत्तम बाणी नू गाउंदे ने। सेवक सिख पूजन सब आवै, सब गावै हर हर उत्तम बाणी। गरीब नवाज साहब सचे पातशाह साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा ओ वाक सिख संगतां ते सेवकां दे हृदय अंदर वसिया, जो महाराज ने लिखिया सी ते सिख संगत अंदर उजागर कीता सी भई पूजा अकाल पुरख की, परचा शब्द दा दीदार खालसे दा। इस वास्ते पूजन योग हस्ती होई अकाल पुरख, पूजा अकाल की, पूजन योग हस्ती है अकाल पुरख। अकाल जिहड़ा काल तो रहत है, जिसने सृष्टि नू जन्म दिता, जिसका नाम अकाल मूर्त है, जिहड़ा अजूनी है, जिहड़ा सहभंग है, जिहड़ा सुते सिद्ध प्रकाश हो जांदा है, वो मिलदा गुरु की कृपा नाल। सतगुरु साहब गुरु रामदास महाराज जी ने बड़ा पवित्र वाक कहा है भई वो गुरु की कृपा नाल मिलदा, जूना तो रहत है, जूनिया विच नहीं आउंदा, ओ 84 लाख जून च नहीं आउंदा, जन्म मरण च नहीं आउंदा, वो जूना तो रहत है। है कौन जी? वो अकाल मूर्त है। उसका नाम की है जी? उसका नाम है सतनाम, सच्चा नाम। उस तो छुट कोई होर भी ताकत है ना जी? वो एक है, ओंकार ओंग त्रै काल विच प्रकाश करन वाला, तिना समया दे अंदर ओ अजागर होन वाला एक अकाल पुरख महाराज है। सब गावे हर हर उत्तम बाणी, उस दी दित्ती होई बाणी नू सब गाउंदे ने। पहला उस दी पूजा करदे ने, पहला उस नू पूजदे ने, फिर पूज के उस दी दित्ती होई बाणी नू गांदे ने। उस दे दित्ते होए जो अकाल की बाणी है, दिते हुए अल्फाज ने, दिते हुए पवित्र वाक ने, मिठे वाक ने, उन्हां नू गांदे ने ते गा गा के विचार करदे ने। सब गावे हर हर उत्तम बाणी। पर गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज साहब गुरु रामदास महाराज नू सवाल करता सिखा ने, सतगुरु अकाल पुरख दी हस्ती ते वेखण विच नहीं आउंदी ना, असी कदे वेखी है, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ, ਅਨੁਭਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿਸ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ।